अवशिष्यते ओम सर्वं वे पूर्णमगम स्वाहा आचमन्यम समर्पयामि सब पूरन हो गए मे ऑल एवरीथिंग बी कंप्लीट इन योर लाइफ डिवोटीज व्हाट एवर योर डिजायर मे इट बी भगवान श्री कृष्ण मे यू ऑलवेज लिव हैप्पी एंड प्रॉस्परस इन दिस लाइफ

तेरी डोली का टीका किए देवा जो भक्त तेरा जिए उसे अमृत का है मोह क्या हंसके विष का वो प्याला पिए तेरी महिमा की छाया तले काल के रटकी पिहाया चले एक चिंगारी प्रतिशोध से फिर ही रावण की लंका जले I putting the dust of your feet on his forehead like a tikal god that devotee of yours lives

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: सीताराम, माय नेम इज संजय सिंह प्रसाद एंड यू आर लिसनिंग टू सुंदर सपना विद रिकी रामलगन ऑन रेडियो जागृति 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
2: Ricky Ramlagan with you, and it's your Sundar Sapna, 102.7 FM.

प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: Think you've tasted curry before? Think again. The Curry Festival at the Fab India Expo brings you 10 unique regional Indian curry recipes in 10 days. Every day is a different adventure. June 12th to 21st from 11 a.m. to 9 p.m. opposite the Medford gas station in Chaguanas. Taste India like never before.
2: Magical music to tug at the heartstrings. This is Radio Jagriti 102.7 FM.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: किनो
1: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय

महापति महादेव की वृंदावन बिहारी लाल की पवन सत हनुमान की जय। स्थान एट दिस टाइम एज वी हैव आवर थर्ड नाइट रीडिंग फॉर टुनाइट। कॉर्डियल वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू दोज ऑन रेडियो एज वेल एज टीवी जागृति। कॉर्डियल वेलकम वी हैव आरटी एट दिस टाइम अकंपनीड बाय द ग्रुप।